0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय

0: सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजाति अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मध्यम लहरी 512.8 दशांश मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम अर्चना।

0: मिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आठ दशकों की है ये गौरवपूर्ण गाथा।
2: ये माध्यम है प्रेम की निष्पक्ष भाषा।
1: आप भी जुड़िए हमारे साथ
2: विज्ञापन के जरिए,
1: दूर दराज तक पहुँचाइए आपके उत्पाद का नाम।
2: विज्ञापन की जानकारी हेतु आइए
1: या संपर्क कीजिए आकाशवाणी नागपुर के मार्केटिंग विभाग से।
2: फोन नंबर है 2548271
1: 2542871।
3: हेलो मनभावन, श्रोते हो, आकाशवाणी नागपूर सर्व रसिक श्रोत्यांसाठी घेऊन येत आहे सुमधुर मराठी गीतांचा बहारदार कार्यक्रम।
4: सहजीवनात आली ही स्वप्न सुंदरी।
3: हॅलो मनभावन, सुमधुर मराठी गाण्यांची,
5: सांग तू माझा
3: तुमच्या आवडीची,
4: पाहिले नमी तुला,
3: संगीतमय मेजवानी प्रत्येक रविवारच्या दिनी। सकाळी ठीक 10 वाजता अवश्य ऐका तुमच्या आवडीच्या मराठी गीतांवर आधारित कार्यक्रम। हॅलो मनभावन,
6: आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून म्हणजेच मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स अर्थातच 585 किलोहर्ट्स वरून।
7: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। ठीक 7:10 प्रादेशिक मराठी बातम्या आणि 7:25 प्रायोजित कार्यक्रम दिलखुलास मुंबई केंद्रावरून सहक्षेपित केल्या जाईल।

0: पिक्चर क्लियर नहीं है।
1: अरे पर्दा ही मेला है।
2: अरे कुछ आता है कि नहीं?
0: सच है भैया, सुपर निर्मा से मिले सुपर सफेदी।

0: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे. ठीक 8 वाजता समाचार प्रभात हिंदी बातम्या आणि 8:15 मॉर्निंग न्यूज इंग्रजी बातम्या दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करण्यात येईल. त्यानंतर ठीक 8:30 राष्ट्रीय मराठी बातमीपत्र मुंबई केंद्रावरून सहक्षेपित करू.
1: का रूप बदल गया है. जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं. गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. आप भी लगवा लीजिए. 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार. 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर.
2: हर घर सूर्य घर.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा. पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं. आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे. 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे. राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी. इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं. हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे.
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं. पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा. पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है. ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं. सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं. कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है. कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा. इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं. इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है. श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही.
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं. UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है.
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए. श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है.
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है. कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़

0: और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का कहा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
5: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
5: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों

0: को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र

0: भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu...

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: क्या है ये?
2: अरे पिक्चर क्लियर नहीं है।
3: अरे पर्दा ही मेला है।
0: अरे कुछ आता है कि नहीं?
4: सच है भैया, सुपर निर्मा से मिले सुपर सफेदी।
5: कमी वेळा जास्त नफा, बस एका क्लिक वर कमाल हसला।
6: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका, RBI सांगते
5: जाणकार बना सतर्क रहा।
7: किशोर कुमार आणि आशा भोसले यांच्या स्वरात अंजार यांचं गीत ऐकूया। संगीतकार आहेत बप्पी लहरी आणि चित्रपटाचं नाव आहे शराबी।

0: कर्करोग
1: मोठा आहे त्यांचा
0: मोठा तड्यांचा कर्करोग तर याविषयी आपण बोलणार आहोत. तर आम्हाला आमच्या श्रोत्यांना तुम्ही याविषयी काय सांगू इच्छाल?
1: मुद्दाम हे टॉपिक मी आज घेतले मोठा त्यांचा कर्करोग, कारण की मागच्या महिन्यात जे आम्ही पाहिलो ना की हमने चार नए पेशंट देखे थे जो की लेस देन 30 इयर्स के थे, तो मुझे काफी ये हुआ की इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है. और ऑफ लेट लास्ट 5-6 ईयर्स में हम लास्ट ऐसा समझ के चलो, मैं हर चीज आजकल ना प्री कोविड पोस्ट कोविड बोलता हूँ, तो ये पोस्ट कोविड मुझे कोविड से कोई संबंध नहीं है इसका, पर हम देख रहे हैं कि यंगर यंग पेशेंट्स में जे लहान वयात जास्त भेटत है. और अगर इंडिया का डेटा देखे तो वेरी शॉकिंग है कि इंडिया में जे कोलोरेक्टल कैंसर म्हणजे मोठ्या हातांचा कैंसर जो म्हणतो आपण, ते 40 वर्षांचा आधी काली 20 से लेके तो 41% पेशेंट्स में है, जो कि वेस्टर्न से बहुत अलग है. तो दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं हमारे खान पान में, लाइफ स्टाइल में, प्रिकॉशंस के मात्रा में, या हो सकता है कि हमारे फूड इनटेक में. तो ये कुछ ना कुछ जरूर है जो कि इस बीमारी को बहुत तेजी से यंगर एजेस में देखने मिल रहा है, और दैट टू इन दोज पेशेंट्स, वो उन्हीं मरीजों में उन्हीं फैमिली में देखने मिल रहा है जहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है फैमिली की. ये यंगर जो कोलो कैंसर है, कोलोरेक्टम, जो मोटे हाथों से जो यंगर यंग लोगों में जो देखने मिलता है, फैमिली हिस्ट्री कारण भी रहती है इसमें. पर ये जितने भी मैं देखा था दे वर नॉट हैविंग एनी फैमिली हिस्ट्री. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था. सेकंड चीज हम देखते हैं कि कोलोरेक्टल का मतलब होता है कि मोटे हाथों से कैंसर और रेक्टम से कैंसर, ये दो गांस मिलन आप मोटे हाथ मरते चला. और ये जनरली वर्ल्ड में देखे तो ये थर्ड टू फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर, इंडिया में फिफ्थ है. पर अगर वर्ल्ड के जो इन्सिडेंस देखते जे हे जे आपण जे जे बोलतो ना जे सगळे हे डेटा डेटा असतात इंटरनेटवर असतो, ग्लोबोकॉन म्हणून एक रजिस्टर असते कॅन्सरची, त्याच्यात हा डेटा असतो, त्याच्यात जे हे इसके जो डेटा देखने को मिलता है ना, तो इसका देखा जाता है कि नियरली 20-21 lakhs न्यू केसेस है वर्ल्ड में, नियरली 9 lakh के आसपास डेथ है. ये दिस वॉज डेटा मोस्ट डेटा 3 साल पहले का है. और अगर 2040 तक का अगर देखते हैं तो उनका बोलना है कि दिस विल बी नियरली 32 lakhs पेशेंट्स एंड नियरली 12-13 lakhs डेथ. तो ये जो डेटा है वर्ल्ड का. पर अगर इंडिया का अगर देखते हैं तो नियरली 70,000 के आसपास न्यू पेशेंट्स है और 40,000 के आसपास डेथ है. अगर मैं इंडिया के लिए बोलता हूँ तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 4 × 5 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेटा है इसका जो रजिस्ट्री है, वी डोंट हैव एनी रजिस्ट्री, स्टैंडर्ड रजिस्ट्री 750 के आसपास डिस्ट्रिक्ट से, और रजिस्ट्री 50 से भी कम है. तो इतने सारे, इट कवर्स ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्री. तो नियरली 80% पॉपुलेशन का रजिस्ट्री डेटा, ये चीज़ें मिसिंग होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे जो अनरजिस्टर्ड रहे हैं. और इंडिया की एक और एक खासियत बात है कि हमारे यहाँ यंगर पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, न्यूअर जो यंग जनरेशन में, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ओल्डर पेशेंट्स में देखने मिलता है.
0: डॉक्टर आपण म्हणजे म्हणताय तुम्ही की यंग म्हणजे मुलांमध्ये किंवा याच्यामध्ये जास्त बघायला मिळतोय, तर याचं कारण काय आहे?
1: देखिए कैसा है कि इसके लिए जो बहुत सारे रीजन दिए उन्होंने, पहला जो रीज़न जो इंडियन पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि चेंज इन लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का एक मेजर रीज़न दिया गया है, चेंज इन द डायट्री पैटर्न और जंक फूड जो असतात, तीसरा इसमें देखता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, फोर्थ इसकी हैवी स्मोकिंग अल्कोहल इंटेक, फिफ्थ जो किताबों में और कहीं नहीं दिया जाता, जो मुझे लगता है और जो मुझे बहुत स्ट्रांग फील होता है कि भाई हमारा हम जो खा रहे हैं अभी, वी हैव लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स. जो फूड देखते हैं ना, खाना देखते हैं, सब्जियां देखते हैं, वो पेस्टिसाइड से भरपूर है एकदम, और उसका कोई कंट्रोल नहीं है इस पर. सेकेंडली हम देखते हैं कि बहुत आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग, हर सब्जी हम फ्रूट देखोगे तो आर्टिफिशियली राइपन करके आते हैं, मुझे फर्स्ट पका के आते हैं, और सब कलर्स यूज बहुत होते हैं. आप सड़क पे जाके देखो, आप जो सब्जी जो फास्ट फूड खाते हैं, पनीर टिक्का खाते हैं, वो इतना लाल लाल होता है, वो कलर क्या है? वो क्या आपको क्या लगता है एडिबल कलर है? 80 रुपये में पनीर टिक्का आपको दे रहा है तो क्या असली पनीर दे रहा है? क्या वो असली कलर लग रहा है उसमें एडिबल कलर? दे आर ऑल इंडस्ट्रियल कलर्स, दे आर वेरी कार्सिनोजेनिक, भयानक कैंसर हो के संभावना बढ़ती है उसमें. आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो टेफ्लॉन यूज करते हैं, अगर टेफ्लॉन में एक सिंगल कट भी लगता है चम्मच का, तो उसमें 1 lakh माइक्रोप्लास्टिक आपके बॉडी में जाते हैं. तो कितना बड़ा चीज़ है, तो जो लोगों को समझता ही नहीं है, तो लोगों को इतनी समझता है कि भाई बेचे इस तरह से आता है. तो वन ऑफ द बेस्ट जो फॉर्म था हमारे कुकिंग था, दैट वाज रॉट हॉट आयरन, आयरन जो है आज दोबारा उसी पे आना पड़ रहा है, क्योंकि दिस आर ऑल डेंजरस. अगर आपको मुझे रेटिंग देना पड़ेगा तो मैं टेफ्लॉन को 5 out of 10 दूंगा और आयरन को 10 out of 10 दूंगा, बिकॉज उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जो कार्सिनोजेनिक है.
0: पुरानी ही चीजें फिर से आनी,
1: पुरानी चीजें तो नहीं बोल दूंगा, पुराना जो लाइफस्टाइल है,
0: पुरानी
1: चीजें, मुझे जो यूज अनयूज्ड चीजें वो तो नहीं यूज करेंगे, पर पण जो पुराने लाइफस्टाईल आहे जिसमें जैसे छे के पहले खाते थे, फ्रेश खाते थे विदाउट

0: पेस्टिसाइड्स खा रहे थे, हाइड्रेशन अच्छा था, रेगुलर डाइट था, मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स हैं उनके हाइड्रेशन बहुत अच्छा लेते थे, वॉकिंग एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी थी और नेचुरल खाते थे, घर का दूध था, घर की सब्जियां थी। तो ये सब चीज़ें तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं कि आप अगर शहर में रहते हो तो ये संभव हो सकता है, पर हम हाइजीनिक तो खा सकते हैं, अच्छा तो खा सकते हैं। हाँ
1: डॉक्टर, एक फोन ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ आपका नाम सांगा आणि प्रश्न विचारा।
2: नमस्ते जी।
0: हाँ बोला बोला।
2: नमस्कार।
0: हाँ बोला
2: सर। डॉक्टर ये पूछा था मेरे को कि भाई के गाल में गटाने और पानी भर रहा है सर, और उसका खीमो भी हो गई और वो भी बार बार पानी भर रहा है सर, वो तो वह है 72 साल की।
0: नहीं देखिए, अगर इनका सर्जरी हो गया है, देखिए इनका सर्जरी हो गया है और गठान है, तो हो सकता है कि लिम्फोसील भी हो, जो लिम्फ जमा होता है वो हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्तर फ़ोन पे देना संभव नहीं है। आपके जो सर्जन ने ऑपरेशन किया उनको जरूर दिखाना चाहिए ताकि ये रोल आउट हो जाए।
2: ऑपरेशन नहीं हुआ सर, अभी वो पानी भर रहा है बस बार बार।
0: तो दिखा दीजिए डॉक्टर को फिर, है ना, जाँच करना जरूर रहेगा उसमें।
2: लेकिन एक बार सर हमने पानी निकाल लिए थे, फिर से हो रहा है सर वो।
0: तो डॉक्टर को दिखाइए, ढंग के डॉक्टर को दिखाइए जिसको समझ है इसमें, ठीक है।
1: माननीय सर हम बात कर रहे थे आप जीवन शैली के बारे में।
0: ये प्रश्न है कि खुपस वे गए, गले में पानी हो रहा है, अब बोलना बहुत मुश्किल है कि पानी हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये लिम्फोसील है, एब्सेस है, या कुछ सीस्ट है, या सेबेसियस सीस्ट है, कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर का मतलब डॉक्टर नहीं, इसमें एक्सपर्ट की जरूरत है इसमें। हाँ ऐसी कोई डॉक्टर जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला।
1: एक्सपर्ट डॉक्टर।
0: हाँ हाँ, मुझे एक संग ढंग का बंदा हो जिसको समझे, हाथ लगा के देखे कि भाई ये लिम्फ नोड है कि सीस्ट है, या उसमें रेडनेस है, पस निकल रहा है क्या, फीवर की हिस्ट्री है क्या, और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्होंने जैसे पानी निकाला होगा, ये बोला ना मैं पानी निकाल के जांच के लिए भेजा ही नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, भेजाऊंगा तो उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमको कि पेशेंट को जांच के लिए सैंपल निकल जाता है, दिन भर घर हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, दूसरे दिन जाए फायदा ही नहीं कुछ उसमें, उसके पूरे सेल से डिजेनरेट हो जाएगी। तो हर चीज़ की एक टेक्निक है, हर चीज़ का सिस्टम है, अगर उसके हिसाब से नहीं करो तो यू विल गेट फॉल्स निगेटिव रिजल्ट, जो कि फॉल्स है, निगेटिव नहीं था, गलती से फॉल्स आया। तो हर दैट इज़ द रीज़न कि उसका एक्सपर्ट देखने से बहुत फर्क पड़ता है कि उसको समझ में आता है कि यह सही में प्रॉब्लमेटिक है कि नॉन प्रॉब्लमेटिक है, अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टिगेट करते हैं।
1: डॉक्टर और एक फोन लेते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार वाक साहब, बोला।
2: वाक बोलतोय।
0: हाँ बोला बोला
2: सर। मला विचारायचं होतं, आता तुम्ही खाण्यापिण्याच्या बद्दल म्हटलं, जसं आपण नियमित दही किंवा प्रोबायोटिक खाल्लं तर आतड्याला म्हणजे चांगली हेल्दी राहील का, व फायबरयुक्त जेवण केलं तर त्यांनी पण आतडी आपली सुदृढ राहील का। अजून एक विचारायचं, जसं अन्न नलिकाचा कॅन्सर होतो तर तो आपल्या जे आतड्या आहे मोठ्या इथपर्यंत कॅन्सर पसरू शकतो का?
0: वा व्हेरी गुड वाघ जी, मैंने खाने का बोला, पीने का तो कुछ बोला ही नहीं। आज पीने का ठीक है, पर हाँ अल्कोहल कॉजेस कैंसर, ठीक है, ध्यान रखना एक बात का कि कोलोन कैंसर का वन ऑफ दी कॉजिटिव में अल्कोहल आता है, ठीक है। हाँ तो रही बात हाइड्रेशन की, हाइड्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और हाइड्रेशन का मतलब है लिक्विड्स, इसका मतलब पानी नहीं है, तो आप लिक्विड्स भी, हाँ काफ़ी लिक्विड्स आ जाते हैं इसमें, जैसे पानी आ जाता है, शरबत आ जाता है, छाछ आ जाती है, छाछ इज़ ए वेरी गुड प्रोटीन, और ये जो यूज़ किया ना हमने प्रोबायोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि हम कोलोनिक म्यूकोसल ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट, और कई बार हम देखने मिलते हैं कि जैसा कि एग्जांपल आज का एक आर्टिकल था जिसमें देखा गया था कि इम्यूनोथेरेपी के दौरान अगर हम इम्यूनोथेरेपी के दौरान अगर हम एंटीबॉडी देते हैं तो कोलोनिक बैक्टीरियास का काफ़ी चेंजेस आते हैं जिससे कि इम्यूनोथेरेपी के इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल इंटीग्रिटी, कोलोनिक बैक्टीरियल इंटीग्रिटी का बहुत मेजर रोल है, और उसको वो नॉर्मल आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर वो अच्छे बैक्टीरिया से जो मरते हैं या उनको डैमेज होता है तो उसके प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं इसमें। और रही बात आतिडोंचा कैंसर, तो कोलोन मध्ये पसरणं जनरली कंटेजियस नहीं पसरता हो, पर हाँ मेटास्टेटिकली जा सकते हैं वेरी रेयरली, जैसे अगर इसोवेजल कैंसर है तो उसका स्प्रेड जैसे अगर होता है तो जनरली लीवर में या तो फिर सरफेस डिपॉजिट्स ऑन द कोलोन, मुझे कोलोन के सरफेस पे डिपॉजिट्स या तो पेरिटोनियल सरफेस डिपॉजिट्स हो सकते हैं, इंट्रालुमिनल मुझे लूमेन के अंदर जाना, ऐसा बहुत जनरली रेयर हो सकता है कि सेकंड मैलेग्नेंसी रह सकती है, और ये सेकंड ऐसी मैलेग्नेंसी जो देखने मिलती है कोलोरेक्टल में, यस दैट इज सीन, एंड इसको बोलते हैं एडिनोमाइसिस पॉलीपोसिस, एपीसी सिंड्रोम बोलते हैं उसको, या तो लीन सिंड्रोम बोलते हैं, खास करके लीन सिंड्रोम में देखने मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको कोलोन कैंसर तो है पर आपके इसमें एक ऐसा डेफिशिएंसी ऑफ जीन होता है जिसके कारण आपको यूट्राइन मैलिग्नेंसी, ईसोबेजल मैलिग्नेंसी, स्टमक कैंसर, ब्रेन कैंसर, हिपेटोबिलरी कैंसर भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, तो किसी घर में अगर यंग कोलोनिक कैंसर है और उसमें ये भी

0: साथ में है तो बाकी लोगों की स्क्रीनिंग करना बहुत आवश्यक हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इन केस में फैमिली हिस्ट्री या लिंच सिंड्रोम नाम का बीमारी की संभावना है, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अच्छा। इसका मतलब क्या है कि अगर पेरेंट्स में है तो 50% चांस है कि बच्चों को होगा, 50% चांस एक पेरेंट में होता है, बिकॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो 50% चांस है कि होता है इसमें।
1: अच्छा डॉक्टर मंदिनिया सर, हम एक कॉल ले लेते हैं।
0: हाँ हाँ
1: हेलो।
2: हाँ मी शैलेंद्र अमृत बोलतो मॅडम।
1: हाँ बोला।
2: मॅडम मला विचारतोय की क्षयरोग अगोदर लाइलाज होता, आता त्याची ट्रीटमेंट निघाली आहे, कॅन्सर ही असाच राहील का, कॅन्सर वरती किंवा फ्युचर वरती सुरू आहे का, की लोक असेच मरत राहतील, कारण की गरीब लोक ट्रीटमेंट नाही करू शकत कॅन्सरची।
0: पहला चीज है कि ना इलाज, दूसरा चीज है कि गरीब लोग, ठीक है दोनों का आंसर देता हूँ मैं। कैंसर ना इलाज नहीं है, प्रॉब्लम है।

0: लेते हैं।
1: हाँ हाँ
0: हेलो।
1: प्लीज।
2: हाँ, मी शैलेंद्र अमृते बोलतो मॅडम।
0: हाँ बोला।
2: मॅडम, मला विचारतो की क्षयरोग अगोदर लाईलाज होता, आता त्याची ट्रीटमेंट निघाली आहे, कॅन्सर ही असाच राहील का? कॅन्सर वरती किंवा फ्युचर वरती सुरू आहे का की लोक असेच मरत राहतील? कारण की गरीब लोक ट्रीटमेंट नाही करू शकत कॅन्सरची।
1: पहला चीज़ है कि ना इलाज, दूसरा चीज़ है कि गरीब लोग। ठीक है, दोनों का आंसर देता हूँ मैं। कैंसर ना इलाज नहीं है, प्रॉब्लम है लोगों का मानसिकता। अब जैसे ओरल कैंसर है, फर्स्ट स्टेज में होता तब तो कुछ ट्रीटमेंट लेता ही नहीं आदमी।
0: लेते
1: बायोप्सी
0: नहीं,
1: करने को बोलते करते नहीं, सर्जरी करने को बोलते तो सर्जरी हाँ बोलते, गायब हो जाते।
0: डर
1: फिर
0: लगता है
1: कुछ तो
0: उनको।
1: भी अलती फलती ट्रीटमेंट चालू रहती, 1 साल बाद आते पूरा मुंह फूटा हुआ रहता, स्टेज 4 रहता। अब उस समय क्या करोगे, मरने वाला है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये क्यूरेबल है। क्षय रोग भी ऐसा ही है, क्षय रोग को अगर आप अनट्रीटेड 6 महीने रखो मरने वाला है, पॉसिबिलिटी कि ही विल नॉट सर्वाइव, पूरे के पूरे अवयव खराब हो जाएंगे। तो इसका गोल्डन रूल है, इट हैज़ टू बी डायग्नोस्ड अर्ली एंड ट्रीटेड अर्ली ऑल्सो। मुझे आपने डायग्नोसिस तो कर लिया पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो क्या फ़ायदा
0: क्या
1: इसका।
0: फायदा है।
1: और इतने एडवांसेस आए पर सबका, हर चीज़ का गोल्डन रूल एक ही रहेगा कि भाई अर्ली डायग्नोसिस इज क्योर। स्टेज 1 में क्योर है, स्टेज 4 में क्योर की बात नहीं करते हम। जनरली होते हैं, अलग बात है, पर दे डिफरेंट हो गए। रही बात ट्रीटमेंट के एडवांसेस की, डेफिनेटली देयर इज अ ट्रिमेंडस एडवांसेस जो कि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट के डिसाइज के कंट्रोल और लंबी लॉन्जिटिविटी। जैसे ब्लड कैंसर, एक CML था जो ब्लड कैंसर था जिसके लिए कीमोथेरेपी देते थे और फाइनल ट्रीटमेंट क्या था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
0: अच्छा
1: जो
0: अच्छा
1: जो हमको ऑटोलॉगस स्टेम सेल एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम बोलते, पेशेंट लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते, पर उसके भी साइड इफेक्ट इतने थे, संभव नहीं था, हर पेशेंट ले ही नहीं पाता था। आजकल क्या है, एक गोली खाना पड़ता है रोज की, इट्स लाइक ए डायबिटीज नाउ। पेशेंट 15 15 साल से अच्छे है। तो डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट फ्रॉम द राइट पर्सन एट राइट टाइम,
0: राइट टाइम,
1: है ना, ये एक
0: ये
1: इम्पोर्टेंट।
0: ज्यादा।
1: दूसरा शब्द है का गरीब पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है, ये भी एक मिथ्या बोलता हूँ मैं। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत है, गवर्नमेंट इतनी ज़बरदस्त
0: हाँ,
1: सुविधाएं दे
0: आजकल
1: रही
0: बहुत
1: है। देखोगे
0: सुविधा
1: MPGY स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है, फिर PMJAY स्कीम है, फिर प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो है, पर पेशेंट उसमें लेना नहीं चाहते हैं,
0: हाँ,
1: है ना। उनको 2 दिन भी रुकना नहीं है,
0: उनको
1: उनको Day 1 को चाहिए।
0: टाइम नहीं देना
1: नहीं
0: है।
1: नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ना। आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा पेशेंस खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि इसके डॉक्यूमेंटेशन लगता है, उसके लिए फॉलोअप करना पड़ता है। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ होगी, एक ऐसा तबका है जो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, जो कि अनपढ़ है, जिसको समझ नहीं है, जिसको दिस आर द रीजन। ये ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। ये है
0: उनको
1: तबका जहाँ पे उनको हमको घर जाके ट्रीटमेंट देनी पड़ रही है। जैसे कि हम करते हैं, हम जाते हैं गढ़चोली में, जो चांदगांव
0: अच्छा
1: में, जहाँ पे पेशेंट को हमको वहाँ जाना पड़ रहा है, बिकॉज हमको पता है वापस ये पेशेंट हमारे
0: नहीं
1: तक
0: आ
1: आ ही नहीं
0: रहे।
1: सकते। नागपुर तक पहुँचना संभव है, उनके लिए ट्रीटमेंट वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। तो हमको ऐसे ट्रीटमेंट डायग्नोज, ऐसे ट्रीटमेंट को विकसित करने जो कि पेशेंट के लिए इजी है, ओरल है, घर पे ले सकते हैं विदाउट मच साइड इफेक्ट्स है, कॉस्ट बहुत कम है। इसको बोलते हैं मेट्रोनॉमिक कीमोथेरेपी, जो हम कर रहे हैं, जो खास करके हम ओरल कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, सर्वाइकल मैलिग्नेंसिस में, लिम्फोमास में काफ़ी यूज़ करें। एक पेशेंट हमारे पास वहाँ पे 4 साल से ल्यूकेमिया का, ब्लड कैंसर का,
0: हाँ,
1: जो 60 या 70 रुपये महीने की ट्रीटमेंट पे अच्छा है अभी।
0: अच्छा,
1: तो
0: यानी
1: ऐसा
0: जागरूकता बढ़ाना जरूरी है आज।
1: हाँ, हर चीज़ का सोल्यूशन है पर उसका एक रास्ता भी है ना। अगर आप गलत रास्ते भी करने चीज़ चलेंगी, और अगर लो प्रॉब्लम मैंने कैंसर में खर्चा पैसा तो एक अलग एस्पेक्ट है जिसका सोल्यूशन है, पर इसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको क्या बोलते हैं, ज्ञानचंद,
0: हाँ,
1: जो गूगल
0: जिसको
1: से ज्ञान लेके आते हैं लोग ना,
0: बस।
1: वो बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। वो उसमें पूरा ज्ञान चलता रहता है उनका कि भाई ये ले लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, कैंसर को छेड़ना नहीं, बायोप्सी करने से फैलता है, औजार लगाने से फैलता है।
0: आजकल बाकी भी लोग बहुत
1: डॉक्टर
0: सलाह देते
1: को,
0: हैं,
1: डॉक्टर को छोड़ के हर आदमी एक्सपर्ट है
0: सलाह
1: इसमें।
0: देते
1: तो
0: हैं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि भाई सही ट्रीटमेंट और सही पर्सन और सही डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें मायने करती है आपके ट्रीटमेंट के आउटकम को। अगर आपका ट्रीटमेंट का आउटकम का आप रास्ते पे खड़े हो, दो डायफर्गेशन है, ठीक है, एक राइट डायरेक्शन का है, एक खराब, अब
0: खराब,
1: वो खराब डायरेक्शन में चले गए तो आपका गलत
0: गलती होगी
1: एंड
0: सर।
1: इज डेथ ओनली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
0: डॉक्टर मंदनिया
1: है।
0: सर, एक और कॉल लेते हैं। हेलो।
2: हाँ सर, मैडम मला विचारायचं होतं
0: हाँ
2: डॉक्टरांना
0: विचारा।
2: की नरेंद्र बोलतो नागपूरहून। हाँ, पायावर असलेल्या वेरिगोवेनचा कॅन्सरशी काही संबंध आहे का म्हटलं?
1: वेरी गुड क्वेश्चन। वेरिकोज वेन का जनरली देर इज नो एविडेंस की जिससे हो सकता, पर लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन के कारण जो लोकलाइज अल्सर्स होते हैं उसमें सेकेंडरी कैंसरस चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जो अनट्रीटेड वेरिकोज अल्सर्स है उसको छोड़ना नहीं चाहिए. दे कैन हैव अ वेरी रेयर इंसिडेंस ऑफ लोकस कैमेसल मैलिग्नेंसिस उसमें, या थोड़े से तो वो संभावना रह सकती है उसमें. पर वेरिकोस वेन परसे से कैंसर

0: नाही होत आहे.
1: डॉक्टर, बऱ्याच वेळा असं म्हटलं जातं की माझं वय कमी आहे तर मला काही कॅन्सर होणार नाही, पण लक्षणं दिसत असतात तरी पण लोक इग्नोर करतात, डॉक्टरांकडे जात नाही. आपण याविषयी बोलू, पण त्याआधी एक फोन घेऊया.
0: प्लीज घ्या.
1: हॅलो
2: हॅलो, गुड मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग सर, मॅम अमरजीत.
0: अमरजीत जी नमस्कार, बोलिए.
2: हाँ सर, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है. अगर सर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, मतलब कि बेबी में भी मतलब वो हो सकता है, या जो मतलब इंसान ये कीमोथेरेपी है तो उसको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है. प्रेगनेंसी एंड कैंसर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है. जनरली हम इसमें काफ़ी जो देखने मिलते हैं, हमने काफ़ी देखे इसमें ब्रेस्ट कैंसर, तो ये बहुत ही सेंसिटिव ट्रीटमेंट प्लान होता है इसमें. क्योंकि कैसा होता है ना कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ऑर्गनोजेनेसिस फेज, मतलब इस समय आपके जो भ्रूण होता है बच्चे अंदर से होता है, उसके ब्रेन, लंग्स, हार्ट, ये सब डेवलपमेंट फेज में होते हैं. ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी ड्रग्स मिलता है उसको जो कि उसको डैमेज करे, तो लॉन्ग टर्म जो आउटकम रहेगा बहुत खराब रहता है इसमें. तो जनरली हम जो ट्रीटमेंट रहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर से दे सकते हैं. वी हैव एटलीस्ट 4 or 5 ब्रेस्ट कैंसर है हमारे पास में, जो कि प्रेग्नेंट थे और दे आर डूइंग वेल. एक था हमारे पास जो कि CML ब्लड कैंसर था, उसको हम कुछ नहीं दे पाए. कंप्लीट ट्रीटमेंट उसकी बच्ची हो गई, उसके बाद वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट. अभी वो 13 years हो गए उसको, शी इज डूइंग वेरी वेल. तो मेन है व्हाट टाइप ऑफ कैंसर, सेकंड थिंग इज कि क्या है कैंसर को ब्रेस्ट सर्जरी की जरूरत है या उसमें डायरेक्ट कीमोथेरेपी की जरूरत है, कौन से फेज में आ रहा है, और क्या ड्रग हम यूज करेंगे जो कि उसके साइड इफेक्ट्स ना हो उसमें. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें
1: डॉक्टर.
0: और कॉमनेस इसमें हमने जो देखने को मिलता है दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर.
1: डॉक्टर मांदिनिया सर, एक कॉल
0: प्लीज
1: कॉल लेते हैं. हेलो हेलो, शायद उनसे संपर्क
0: ठीक है. हमारा जो कोलोनिक मैलिग्नेंसी के बारे में जो हम बोले थे ना, कि इसमें मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे स्ट्रेस देना था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार पेशेंट हमारे पास थोड़े एडवांस स्टेजेस में आते हैं, और इसका एडवांस स्टेजेस में आने का मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में जो मुख्य कारण देखा है ना, दैट इज़ वेग सिम्टम्स. जनरली इसके सिम्टम ना काफ़ी वेग होते हैं, जैसे पोट भरून भरून आना, संडास का बॉबल मूवमेंट चेंज हो जाते हैं, कैसे दिन में 5-6 बार जा रहे हैं, लूज मोशन हो रहे हैं, किसी को मुकड़ चिकट चिकट संडास होती है बार बार, जो कि उसमें ब्लड स्टेन भी होते हैं इसमें, ये संभावना है. किसी का स्टूल में ब्लड निकलता है, तो कई बार ये जो संडास में से खून जाना ना, 90-95% लोग ना उसको पाइल्स को एक्टिवेट करते हैं, और उस कारण से क्या होता है कि कई बार तो पेशेंट खुद की दवाएं लेते हैं, फिर कई बार पाइल्स के एक्सपर्ट के जाते हैं, वहाँ पे भी कई 3-4, 4-5 महीने तक उसको पाइल्स का ट्रीटमेंट मिलता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ब्लीडिंग, दो चीज़ें बहुत डेंजरस है इसमें, अगर संडास में से खून निकल रहा है, हीमोग्लोबिन कम है और एल्डरली पॉपुलेशन है, तुरंत में एक बार गैस्ट्रो को एक्सपर्ट को ओपिनियन लेना चाहिए. बिकॉज कैसा होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें ना सिग्मॉइड एरिया में या रेक्टल एरिया में अपर इसमें हो सकती है, जो कि PR मुझे नीचे से उंगली डाल के नहीं पता चलती है, तो सिग्माइडोस्कोपी से एकदम क्लियर हो जाता है कि ये पाइल्स है कि ट्यूमर है जो ब्लीड हो रहा है. और अगर अर्ली स्टेज में पकड़ती है, तो अभी की जो रेक्टल मैलिग्नेंसीज है उसमें कुछ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें हो सकता है शायद सर्जरी की भी जरूरत ना पड़े. टोटल नियोजन कीमोथेरेपी देते हैं इसमें, अलॉन्ग विद कीमो रेडिएशन देते हैं, उसके बाद में फॉलोअप देखते हैं, पेट स्कैन देखते हैं, लोकल बायोप्सी करते, ट्यूमर नहीं है, वी कैन फॉलो देम. ये कितनी बड़ी चीज़ है ना कि यू कैन बिना थैली लगे संडास की
1: फिर हम कर सकते हैं.
0: एक बहुत अच्छी स्टडी आई थी, डोस्टालिमैब करके ड्रग था, जिसमें उन्होंने देखा था कि ये ऐसे जो MSI हाई ट्यूमर्स थे, उन्होंने सिर्फ उसको इम्यूनोथेरेपी दी थी, और वो 17 patient की स्टडी थी, 17 के 17 पेशेंट अभी भी नॉर्मल है विदाउट सर्जरी. तो ये दैट मीन्स वी आर, पहले एक बार का बहुत बड़ी सर्जरी होती थी, फिर मिनिमल सर्जरी होना शुरू हुई, अभी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं ऐसे वक्त में, ऐसे भी ट्रीटमेंट आ रहे हैं. तो
1: उसका आधुनिक बहुत शस्त्रक्रिया हो,
0: क्योंकि कैसा हो रहा है ना कि शस्त्रक्रिया के साथ साथ में ऑर्गन प्रिजर्वेशन, और हो सके तो सर्जरी की जरूरत ना भी पड़े, इसके लिए भी ट्रीटमेंट आ रहे हैं. तो इसमें इम्यूनोथेरेपी इज नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे देखा गया कि ये जो स्टडीज थी जिसमें इम्यूनोथेरेपी यूज की गई थी, न्यूअर्जन मतलब सर्जरी से पहले, और उसमें देखा गया था कि जिसमें कंप्लीट रिस्पॉन्स था ऑन पेट स्कैन एंड बायोप्सी, दे ऑब्जर्व देम, मुझे उसको कुछ भी ट्रीट नहीं किया, दे आर स्टिल डूइंग वेल, दे हैड ए कम्प्लीट रिस्पॉन्स, दे वेर कम्प्लीटली क्योर्ड विदाउट सर्जरी. तो ये ऐसा चंक है तो ऊपर वो चंक हमने देखा ही नहीं, और उसको ऑपरेट करके अगर थैली लग जाती है उसको, तो दैट इज ए परमानेंट. और आपने देखेंगे कि थैली का मतलब है कोलोस्टॉमी बैग. पेशेंट बिल्कुल नहीं चाहता, पेशेंट को अगर गलती से भी जरूरत पड़ती है और हम उसके बारे में काउंसलिंग करते हैं, तो पेशेंट पहला रिएक्शन तो होता है कि इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और वो अवॉइड के चक्कर में वो इतना घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, जहाँ पे उनको

0: उनकी भाषा में बात होती है कि भी हाँ मैं अवॉइड कर सकता हूँ, तो वहाँ पे वो करते हैं ट्रीटमेंट उसमें।
1: देते हैं।
0: उस कारण से अगर वो साइंटिफिक हो तो वेरी गुड, अगर नॉन साइंटिफिक होने के कारण तो
1: तो ज्यादा
0: बीमारी
1: बढ़ सकते
0: बढ़
1: हैं।
0: भी जाती है और स्प्रेड होके आती है। तो जो स्टेज वन की बीमारी अगर स्टेज फोर में मिलते हैं तो हम
1: तो
0: क्यूर से कंट्रोल पे आ गए, समझ रहे हो? क्यूर का मतलब है जड़ से आना, कंट्रोल का मतलब है
1: सिर्फ उसको
0: रोक
1: दम
0: सकना
1: करना।
0: और लाइफ
1: हाँ
0: बढ़ाना।
1: हाँ डॉक्टर, और एक फोन लेते हैं। हेलो हेलो।
2: हाँ, मी भगवान नगर नागपूर वरून अशोक जोशी बोलतो आहे।
1: हाँ बोला।
2: 2008 मध्ये माझं मोठ्या आतड्यांचं कॅन्सरचं ऑपरेशन झालं होतं।
1: हाँ विचारा ना।
0: हेलो। बोला
1: हाँ,
0: बोला।
2: आणि आता तो 17-18 वर्ष होऊन गेलेली आहेत।
0: अच्छा।
2: माझा प्रश्न असा आहे की त्यावेळेला माझं कोलोस्टॉमीचं ऑपरेशन सुद्धा झालं होतं, 6 केमोथेरपी सुद्धा झालेल्या होत्या। माझा प्रश्न असा आहे की आता इतक्या वर्षानंतर पुन्हा ते रिपीट व्हायचे चान्सेस आहेत का?
0: जनरली बहुत अच्छा।
2: त्यांचं
0: पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, यू आर ए कैंसर कॉन्करर, जीता
1: जीता
0: है आपने उसको,
1: है।
0: और यू आर शोन ए गुड सर्वाइवल। मुझे इसमें क्योर भी दिखा है, साथ साथ में लॉन्ग टर्म क्योर भी दिख रहा है, 18 ईयर्स हो गया। तो अब इनका प्रश्न जो है ये है कि भाई
1: फिर से
0: इसमें
1: उसको
0: रिकरेंस हो सकता है क्या? हम रिकरेंस का मतलब था सेम बीमारी, पर न्यू प्राइमरी, हाँ न्यू प्राइमरी हो सकता है,
1: अच्छा
0: नॉट रिकरेंस। तो दैट इज द रीजन इनको हर 2 से 3 साल में कोलोनोस्कोपी की जांच करने
1: जरूरत।
0: के लिए बोला जाता है एज पर द गाइडलाइंस, ताकि कई पूरे आपका तो एक कोलोन का ही भाग निकला, पर कैंसरोजेनेसिस पूरे कोलोन में वो संभावना रह सकती
1: हो
0: है।
1: सकती है।
0: तो ये क्यों करते हैं हम ना, कि अगर इसमें दिखता है कि कोई अबनॉर्मल पॉलिप है या ट्यूमर जैसा दिख रहा है तो उसको प्रियमटिवली आप निकाल सकें। जनरली कैंसर के जनरली बहुत सी बार देखने का क्या होता है कि स्क्रीनिंग में जब हम करते हैं तो छोटे मोटे पॉलिप, पॉलिप मुझे छोटे से एक मशरूम सर का कैसा होता
1: अच्छा
0: है
1: अच्छा
0: दिखता,
1: अच्छा
0: पर ही इज पॉलिप जो लॉन्ग स्टँडिंग अन अड्रेस राहिले तर हे ट्यूमर मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो, ते ट्यूमर कॅन्सरस राहू शकतो। म्हणून जर पॉलिपस तुम्ही पहिले काढलं तर मग शक्यता त्यातला कॅन्सरमध्ये बदलण्याची शक्यता
1: शक्यता है।
0: खूप कमी होऊन
1: खूप
0: जाते।
1: कम
0: म्हणून दॅट इज द रिझन फॉर स्क्रीनिंग। तो इसलिए स्क्रीनिंग करते हैं।
1: स्क्रीनिंग।
0: स्क्रीनिंग का मतलब इनका जो है, इन्होंने आइडियली इनके डॉक्टर ने डेफिनेटली बताया चाहूंगा कि हर
1: कि
0: दो से
1: स्क्रीनिंग
0: तीन
1: करनी
0: साल
1: जरूर।
0: में कोलोनोस्कोपी करना चाहिए इन्होंने, ताकि भाई अगर कोई नया लीजन या नया पॉलिप को पूरे बचे हुए कोलोन में दिख रहा है तो दैट कैन बी एड्रेस्ड, अदरवाइज नथिंग टू वरी। रिकरेंस की संभावना नहीं है, पर न्यू प्राइमरी की संभावना रह सकती है।
1: डॉक्टर मंदिनी, आपण एक फोन घेऊ।
0: प्लीज।
1: हेलो।
3: हेलो
1: हाँ, आपलं नाव सांगा आणि
3: हॅलो।
1: प्रश्न विचारा।
3: हा मॅडम नमस्कार। माझा प्रश्न माझ्या रिलेटिव्ह साठी आहे मॅडम,
1: हाँ
3: की मेरे रिलेटिव्ह को सर स्पाइन कैंसर निकला है और वाइफ 39 इयर्स ओल्ड और वाइफ है 36 इयर्स ओल्ड, जिसने कंसीव किया है बच्चा। तो क्या बच्चे को अफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट रहेगा, आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, ये मैं पूछ रहा था।
0: जनरली नहीं, देर इज़ नो वे कि ऐसा देखने को मिलता है कि भाई फादर से बच्चे में गया हुआ है स्पाइन कैंसर में। पर हाँ, अगर ये सब जो कोलॉन वोलॉन का संभावना है तो हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, दैट इज़ कॉल्ड 50% रिच, जो मैंने आपको पहले
1: अच्छा हाँ,
0: बताया था।
1: पहले की 50%
0: हाँ,
1: हो
0: तो
1: सकता है
0: वो रिस्क, दैट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट फीचर्स में, इनमें संभावना नहीं
1: नहीं।
0: लगती मुझे इसमें, ठीक है? स्पाइन कैंसर एक बहुत ही वेक टर्म है, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा टाइप का कैंसर है, पर मुझे लगता है कि निश्चिंत रहे। पर ऐसे भी स्क्रीनिंग जो होती है बीमारी के लिए बच्चों में, जो सेकंड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं यूएसजी में, उसमें से भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। पर ये ट्रांसफरेबल या हेरिडिटरी कैंसर की संभावना स्पाइन के लिए कम लग रही है मुझे।
1: हाँ
0: हाँ,
1: कम होती है।
0: एक जगह स्पाइन में ऐसा होता है कि भाई कोलोनिक कैंसर जो बुज में जो बोल रहा था लिंच सिंड्रोम, उसमें कोलोनिक कैंसर कैसे स्पाइनल या ब्रेन ट्यूमर्स भी देखने मिलते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन में ये संभावना है जो कि बहुत बहुत
1: बहुत ही
0: बहुत
1: कम
0: बहुत
1: होता
0: रेयर
1: है।
0: है, जो कोलोन का मैलिग्नेंस है ही नहीं इसमें,
1: हाँ
0: तो
1: डॉक्टर
0: बोलना मुश्किल है।
1: मंदनिया सर, अभी हम इस कॉल से पहले बात कर रहे थे स्क्रीनिंग की, तो ये स्क्रीनिंग का क्या रोल होता है?
0: देखिए कैसे है कि ऐसे बहुत ही कम कैंसर है जहाँ पे स्क्रीनिंग का एडवांटेज है। स्क्रीनिंग हम तब करते हैं जब एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, मुझे जो पेशेंट नहीं है वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है जो
1: अच्छा
0: सिम्टम्स नहीं है, उसमें हम स्क्रीन करके देखते हैं कि इसमें कैंसर के कुछ प्री कैंसरस कुछ दिख रहा है क्या। जैसे ब्रेस्ट
1: अच्छा
0: कैंसर में स्क्रीनिंग कैसे करते हैं आप, मेमोग्राफी से, उसमें क्या देखते हैं आप, जो बीमारी नहीं थी हाथ से लग नहीं रही उसमें भी कुछ दिख सकता है,
1: दिख
0: छोटा सा
1: सकता है।
0: लीजन है जिसमें कैल्सिफिकेशन है या ये इरेगुलर है, जो कि कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो जो कैंसर की तरफ पॉइंट करते हैं। एग्जैक्टली सेम इज़ विद द कोलॉन। तो
1: अच्छा
0: कोलॉन स्क्रीनिंग में हम ये देखते हैं कि प्री कैंसरस कुछ कंडीशन है क्या इसमें, जैसे कि कोलोनिक पॉलिप्स है, अल्सर है, ऐसा कुछ रहता है, तो देन दे कैन बी बायोप्सीड और दे कैन बी रिम, उसको निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। जनरली स्क्रीनिंग के गाइडलाइंस में थोड़ा चेंजेस आया है, पहले बोलते थे 50 साल, में करिए, अब अभी गाइडलाइन बोलती है 45 साल में करिए, इसलिए कि क्योंकि

0: वी आर सीइंग यंगर कैंसर पेशेंट जो देखने मिल रहे हैं ना, यंग लोगों में देखने मिल रहा है, तो इसलिए इसका स्क्रीनिंग के 5 साल से कब हुआ। एक जब अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो अगर एक बार स्क्रीनिंग करते तो 8 से 10 साल बाद दोबारा कर सकते हैं उसमें। और कब तक करना चाहिए? 75 साल के एज तक। अच्छा। उसके बाद में जनरल रिकमेंडेड नहीं है, पर फैमिली हिस्ट्री है
1: तो
0: जिसमें है तो उसमें 2 टाइप का स्क्रीनिंग होते हैं। फिर उसमें कौन सा टाइप है वो बहुत थोड़ा साइंटिफिक बात करो। अभी एक लिंच सिंड्रोम है, एपीसी बोलते हैं, एडेनोमायोसिस पॉलीपोसिस कोलाई। एपीसी जो बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि पूरा जो आंत होती है उसमें भर भर के छोटे छोटे छोटे छोटे मशरूम जैसे पॉलिप्स होते हैं, तो ये 100% कैंसर में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि भाई ये कैंसर में कन्वर्ट होने से पहले पूरी बड़ी आंत निकालते हैं, इसको बोलते हैं टोटो प्रोक्टो कोलेक्टोमी, मुझे कोलन और रेक्टम पूरा निकाल के कोलोस्टोमी बैग लगानी पड़ती है। अगर ये नहीं करते तो ये 100% कन्वर्ट होने वाला है। तो ये यंगर एज में, तो दैट इज द रीजन इसमें 20 साल की एज में पहला कोलोनोस्कोपी कर लेना पड़ता है। और दूसरा जो लिंच सिंड्रोम जो बता रहा था मैं, उसमें जो जेनेटिकली हम पता कर सकते हैं कि लिंच सिंड्रोम का पेशेंट है करके, जैसे है ना MLH जीन देख के, तो उसमें हमारा जो स्क्रीनिंग होता है जनरली 30-40 ईयर्स में पहला।
1: डॉक्टर एक आखिरी कॉल ले लेते हैं। हेलो, आपला थोडक्यात प्रश्न विचारा आणि सर त्याचं समाधान करतील।
2: मॅडम मी संसारून बोलत आहे, संजीव कुमार। आपला ओरल ल्युकोप्लेकिया कॅन्सर मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो का?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। ओरल ल्यूकोप्लेकिया इज कॉल्ड प्री कैंसरस कंडीशन, तो डेफिनेटली ओरल ल्यूकोप्लेकिया जो रहता है ना प्री कैंसर, मुझे इसमें कैंसर होने की संभावना रहेंगी। तो इसमें चट्टे 2 तरह से होते हैं, एक लाल चट्टा जिसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया, एक व्हाइट चट्टा जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। तो हाइएस्ट जो चांस होते हैं एरिथ्रोप्लेकिया के, लोअर चांस होते हैं ल्यूकोप्लेकिया के। अच्छा। तो ल्यूकोप्लेकिया भी कैंसर में कन्वर्शन हो सकता है, इसलिए इसको रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। प्री कैंसरस कुछ दिख रहा है, लीजन दिख रहा है, अल्सर दिख रहा है, नोडलैरिटी दिख रही है, तो तुरंत में उसको एड्रेस करना जरूरी है। और एक लुक से समझ में आ जाता है कि ये इसमें चेंजेस हो रहे कि नहीं हो रहे।
1: हाँ डॉक्टर मानधनिया सर, हमारे श्रोताओं को जाते जाते आप बिल्कुल थोड़े से समय में क्या बता सकेंगे?
0: देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था ये था कोलोन कैंसर, और कोलोन कैंसर में मेजर ये बोलना, मैसेज देना जरूरी है कि डू नॉट इग्नोर दी सिम्टम्स पहला। अच्छा, हाँ। संडास में अगर खून जा रहा है तो ये पाइल्स नहीं है, इसकी जाँच होनी चाहिए। अर्ली डिटेक्शन जो होता है वो लाइफ को सेव करेगा, तो दैट इज द रीजन कि हमको इसमें अर्ली स्क्रीनिंग का बहुत मेजर रोल रहेगा। एंड स्क्रीनिंग कैन प्रिवेंट द कैंसर, ये बहुत कम कैंसर होते हैं जिसमें स्क्रीनिंग कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, तो ये वन ऑफ द कैंसर है। फैमिली हिस्ट्री है तो बी केयरफुल, ये आप में संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस रिड्यूसेस द कैंसर, तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत जरूरी है। रेड मीट है ये इसको अवॉइड करें, प्रोसेस मीट्स को अवॉइड करें, फाइबर ज़्यादा ले, हाइड्रेशन अच्छा ले और हेल्दी खाए। और आज की कंडीशन में जो एक श्रोता ने पूछा था कैंसर इज क्यूरेबल, तो ये मिथ कहीं नहीं जाने चाहिए कि कैंसर मुझे डेथ है। कैंसर इज डेफिनेटली क्यूरेबल, सिर्फ आपका अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा।
1: हाँ डॉक्टर मानधनिया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं की दी। तर श्रोते हो हावता कॅनकेअर फाउंडेशन आणि मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम। आजचा विषय होता मोठ्या आतड्यांचा कर्करोग आणि तज्ज्ञ होते डॉक्टर सुशील मानधनिया। आजच्या कार्यक्रमाला तांत्रिक सहाय्य लाभलं दीपक भुते आणि सतीश कोडमलवार यांचं, निर्मिती सहाय्यक होते अतुल साखरकर आणि सादरकर्ते सचिन लाडोळे। तेव्हा मी भावना लोखंडे डॉक्टर सुशील मानधनिया यांच्यासह आपला निरोप घेते पुन्हा भेटण्यासाठी, तोपर्यंत नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूर वरून एकाच वेळी प्रसारित करण्यात आला।

0: हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। साथ ही हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक है कहानी। तो आइए कथा सागर में सुनते हैं कहानी राघव की सिया, इश्क ए दास्ता, जिसे सुना रही हैं पूनम मिश्रा।
1: नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा, पूर्णिमा, नागपुर से। आज मेरी एक कहानी मैं आप सबकी समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, जिसका शीर्षक है राघव की सिया, इश्क ए दास्तां। दो घर, एक आंगन, दो नन्हे बच्चे एक साथ खेलते, लड़ते, चिढ़ाते और कभी कभी एक दूसरे को मार भी देते, मगर सब भूलकर पुनः दोस्ती हो जाती। फिर ऐसे खेलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव और सिया दोनों पड़ोसी थे। राघव के पिता व्यवसायी थे तो वहीं सिया के पिता सरकारी दफ्तर में उच्च पद पर आसीन थे। सिया अपने परिवार की बड़ी बेटी

थी और परिवार में 18 बरस बाद किसी बेटी का जन्म हुआ था, तो सिया सभी की लाडली थी। सिया का श्वेत रंग, भूरी आंखें और काले घुंघराले लहरिया केश सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। वहीं राघव बिल्कुल विपरीत, श्याम रंग का राघव का चेहरा मासूमियत से भरा रहता था। शांत स्वभाव का राघव सिया के परिवार में एक सदस्य जैसा रहता था। सिया के घर उसके चार अविवाहित चाचा भी संयुक्त रूप से रहते थे, इसलिए सिया की माँ का सिया की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिलता था। चाचा लोग उसे घुमाते, स्कूल छोड़ते और लेकर आते थे। बस घर में माँ सिया को भोजन और पढ़ाई कभी पूछ लेती, नहीं तो सिया की पढ़ाई भी चाचा लोग ही संभाल लेते थे। सिया का उच्च शिक्षित परिवार, जहाँ पिता फिजिक्स में डॉक्टरेट थे और चाचा लोग फिजिक्स में MSc थे। सिया के घर के सामने बड़ा सा आंगन था और आंगन भी ऐसा जहाँ चारों ओर वृक्ष की छाया और शीतल हवा मंद मंद महक लिए इठलाती रहती थी। घर के आंगन में सामने नारियल का बड़ा पेड़ था, वहीं दूरी पर मेन गेट पर आम का बड़ा वृक्ष था, वहीं दूसरे कोने में गुलमोहर का वृक्ष था। वहीं सिया के घर के पीछे ब्रह्म कमल का पेड़ था, जिसमें रात्रि के समय फूल खिलते थे और सुबह होते ही वे फूल बंद हो जाते थे। उस फूल की एक झलक देखने के लिए सभी लोग सिया के घर आते थे। यहाँ तक कि सिया के पिता के ऑफिस के सहयोगी भी परिवार सहित वहाँ पहुँच जाते। सिया के घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता था। हमेशा मेहमानों का आना जाना और सिया की माँ सभी मेहमानों की खातिरदानी भी बड़ी दिल्लगी से करती थी। यही कारण था कि सिया के घर चाचा के कॉलेज और ऑफिस के साथियों का भी आना जाना लगा रहता था। वहीं राघव भी परिवार में सभी के साथ घुल मिल गया था। राघव के पिता का व्यवसाय महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तक फैला था, इसलिए वे लंबे समय तक घर से दूर ही रहते थे दोनों परिवार। लेकिन समय समय पर किसी न किसी कार्यक्रम के बहाने मिलते रहते थे। राघव और सिया जो अब बड़े हो गए थे, तो पढ़ाई का बोझ भी बढ़ गया था, इसीलिए वे दोनों स्कूल की गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। दोनों के स्कूल अलग थे, फिर भी दोनों साथ में स्कूल का होमवर्क एक दूसरे को करने में मदद करते थे। और शनिवार रविवार को सिया के घर राघव कैरम खेलने के लिए आ जाता था, तो कभी कभी राघव और सिया भी बैठ जाते। लेकिन यदि कभी सिया और राघव अकेले दोनों कैरम खेलते और राघव यदि हार जाता, तो राघव सिया की चोटी खींच लेता और उसे चढ़ाने लगता। कभी तो सिया भी उसे चढ़ाती और हंस देती, तो कभी कभी माँ के पास रोते रोते जाकर सिया राघव की शिकायत कर देती, तो सिया की माँ कहती, तुम चिंता मत करो बेटा, कल जब राघव आएगा तो मैं उसकी खबर लेती हूँ, चलो जाओ तुम अब अपना होमवर्क पूरा कर लो। समय का पहिया कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो नदी के जल की तरह आगे की ओर बढ़ता रहता। और राघव और सिया भी अब 10वीं कक्षा में पहुंच गए थे, तो सिया भी का परिवार चूंकि उच्च शिक्षित था, तो घर में हिदायत दी गई कि अब सिया आपको पढ़ाई में ध्यान लगाना होगा और खेलना थोड़ा कम करना होगा। उधर राघव भी पढ़ाई में लग गया और वो ट्यूशन में व्यस्त रहने लगा। फिर भी शनिवार और रविवार को दोनों समय निकाल लेते और कैरम खेलते या आंगन में अन्य बच्चों संग लुका छिपी खेलते, तो कभी लगोरी जैसे खेल भी खेलते और फिर खेल समाप्त होते ही अपने अपने घर सब चले जाते। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का समय आ गया और परीक्षा भी समाप्त हो गई। राघव और सिया को तो अब पूरी छूट मिल गई थी खेलने की। अब दोनों दोपहर में कैरम खेलते तो कभी ताश के पत्ते या सांप सीढ़ी का गेम खेलते। कभी कभी रात्रि में सिया की माँ और चाचा लोग भी उसमें शामिल हो जाते। जैसे जैसे छुट्टियों में दोनों मिलते, दोनों के दिल की धड़कन भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब बस दोनों भी आंखों ही आंखों में मिलाकर कभी कैरम तो कभी अन्य खेल खेलते। लेकिन सिया की माँ के सामने जब वो आराम कर रही होती, तभी वो एक साथ खेलते थे।

या फिर उस समय खेलते जब सिया की माँ कोई पुस्तक पढ़ रही होती, क्योंकि सिया की माँ को साहित्य की पुस्तकें पढ़ने का शौक था। दोपहर में पुस्तक भी पढ़ लेती और आराम भी खेल लेती। तभी राघव और सिया दोनों आमने सामने बैठकर कैरम भी खेल लेते। 10वीं का रिजल्ट आया, सिया को 90% अंक प्राप्त हुए तो वहीं राघव को 80% अंक मिले। दोनों के माता पिता अपने बच्चों की सफलता से खुश थे। अब दोनों अपने कैरियर पर ध्यान देना उचित समझ रहे थे और दोनों कॉलेज में दाखिला और 12वीं की तैयारी में लगे थे। लेकिन प्यार की पंखुड़ियां धीरे धीरे एक फूल बनने के लिए उत्सुक थी। प्यार की बहार की महक सिया और राघव के इर्द गिर्द महकती रहती थी। फिर भी दोनों ने अपनी शिक्षा करियर पर ध्यान देना उचित समझा और सही मार्ग पर चलने का निश्चय किया। लेकिन जब भी छुट्टी होती तो दोनों कैरम अवश्य खेलते, या राघव कभी कभी केमिस्ट्री के नोट्स या फिजिक्स के नोट्स के बहाने सिया से मिलने आ जाता। चूंकि सिया के चाचा व पिता फिजिक्स में एमएससी थे तो सिया संग राघव को भी मदद मिल जाती थी। सिया भी अब यौवन की दहलीज पे खड़ी थी। कंचन सिकाया भूरी भूरी आंखें राघव को सिया से आंखें मिलाने से रोक नहीं सकती थी। एक दिन जब राघव सिया के घर आया तो सिया संतरा छील रही थी। राघव सामने खड़ा था। सिया ने संतरे का छिलका राघव के आंखों के सामने निचोड़ दिया और उसकी अम्लीयता के कारण राघव की आंखों में जलन होने लगी और वो आंखें मलने लगा और चिल्लाने लगा कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तब सिया ने दौड़ कर एक तौलिया गीला कर राघव की आंखों में लगाने लगी। तब राघव को राहत मिली और जलन भी कम हो गई। यह दृश्य को देखकर इश्क के प्रति समर्पण व सम्मान की भावना थी जिसने राघव को यह बता दिया कि यही सच्चा प्यार है। और राघव ने तभी निर्णय कर लिया कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सिया का हाथ थामे ही आगे बढ़ना है। राघव सिया के बिना अधूरा है। दोनों ने 12वीं की परीक्षा भी उच्च अंकों से उत्तीर्ण कर ली और राघव इंजीनियरिंग करने चला गया और सिया इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स लेकर स्थानीय कॉलेज में बीएससी करने लगी। 3 वर्ष का समय बीत गया। सिया ने स्नातक पूर्ण कर लिया और वो एमएससी की तैयारी में लग गई। वहीं राघव ने 1 वर्ष बाद इंजीनियरिंग समाप्त कर ली और राघव अपने पिता के व्यवसाय में लग गया और सिया एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दूसरे शहर में चली गई। लेकिन क्या करें, ये दिल है कि मानता नहीं। राघव भी काम के सिलसिले में बाहर रहता या सिया से मिलने का बहाना बना लेता और सिया के शहर पहुंच जाता। दोनों का प्यार परवान पर था। दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। क्योंकि राघव गंभीर स्वभाव का था इसलिए वो सिया को हमेशा समझाता, सब कुछ ठीक होगा। दोनों दूसरे शहर में अकेले घूमते, पहाड़ियों की सैर करते। लेकिन ये छुप छुप के मिलना भी दोनों को पसंद नहीं था। यहाँ सिया के माता पिता सिया के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें सिया राघव के प्यार की भनक तक नहीं थी, बस दोनों अच्छे दोस्त है इतना ही उन्हें मालूम था। यहाँ सिया सब रिश्ते ठुकरा रही थी तब सिया की माँ ने सिया को पास बैठा कर पूछा कि तुम रिश्ते क्यों ठुकरा रही हो। तब सिया ने माँ के आंचल में चेहरा छुपाते हुए कहा, माँ हम सिर्फ और सिर्फ राघव संग आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और यह हम दोनों का संयुक्त निर्णय है। सिया की माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। सिया कहती है, माँ हम राघव की सिया है। घर के आंगन में खेलते खेलते कब प्यार का रंग चढ़ा किसी को खबर तक नहीं लगी। रंग जैसे जैसे मिलता गया पक्का होता गया और इश्क अब दोनों की आंखों में अपना रंग दिखा रहा था। आज वही इश्क को 30 बरस हो गए हैं, फिर भी रंग आज भी वैसा ही पक्का है। ना कोई इश्क की भाषा है, बस इश्क है।

0: यहाँ था एक दूसरे के प्रति संयम, समर्पण और सम्मान। इसलिए एक कादंबरी में लिखा गया है, जीवित फलम ही प्रियतम मुखाक्लोकम। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कहानी राघव की सिया, जिसे प्रस्तुत कर रही थी पूनम मिश्रा। साहित्य की एक और विधा है कविता। तो आइए काव्य पाठ के अंतर्गत सुनते हैं भाऊराव मुड़े से उनकी स्वरचित कविताएं।
2: नमस्कार, मैं भाऊराव मुड़े प्रस्तुत करता हूं मेरी स्वरचित कविताएं। मेरी पहली कविता जिसका शीर्षक है माश।

श्री श्वेतवस्त्र में माँ शारदा भक्तों को लुभावत सुरासुर मुनि निश

भटके जब मन अज्ञान के अंधियारों में, ज्ञान उजाला भर सबके अंतर मन में। जननी चहूं वेदों की सक

तुम संगीत विद्या की देवी हो महास्वामिनी, मयूर वाहन सबके मन को अतिभाए, देवी शारदा माँ भक्तन के

शारदा जय जय वीणा धारिणी। मेरे कविता का शीर्षक है योग। मिलकर योग करे मन में आनंद भरे, योग यह साधना जग में प्रचार करे। योग है हम सबका इसे सीमा में नाकृत करे, योग हमारा प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करे। योग से बढ़ेगी आयु इससे न परहेज करे, योग दे तनाव मुक्ति योगा का ही अंगीकार करे। योगा यह धरोहर इसे देश देश पहुंचाए, योगाभ्यासी बनकर युवा पीढ़ी को दीर्घायु करे। योग देता रोग मुक्ति मन को भी प्रसन्नता मिले, कैंसर भागे योग से सभी योग की साधना करें। योग से बनोगे योगी साथ ईश्वर का भी पाओगे, योग ही ईश्वर भक्ति योग के साथ इंसाफ करें। मेरे तीसरी कविता का नाम कूस है। बिल्लोरी दर्पण में वह प्रतिबिंब तुम्हारा ही तो था, अनचिन्ना स्पर्श था किंतु अंग तुम्हारा ही तो था। नीलांबर की चटक चांदनी चंद्र किरण से दरासनात, मंद मंद शीतल किरणों की मिली निशा को थी सौगात। सुरभित पवन झकोरों में थी गंधमालती सुमनों की, मलय पवन के साथ मधुर अनुबंध तुम्हारा ही तो था। दाई दुई बेला चमेली पुलकित रजनी गंधा थी, चंपा चुप सेवंती व्याकुल अलकंदा थी। था गर्विला गुलाब मौन वह दृश्य बड़ा अनोखा था, रसमय हर सुमनों से छलकता मकरंद तुम्हारा ही तो था। लहराता रत्नाकर जिसमें प्रतिमा वसुंधरा की थी, वह स्पर्श अपेक्षित जैसे ममतामयी धरा की थी। निसर्ग रूपी कर नहीं वह गोद तो भारत माँ की थी, और दू जाकर स्वातंत्र वीरों के संग तुम्हारा ही तो

मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है जीव मैं कैसे। हूँ धधकता एक अंगारा, बन राख जीव मैं कैसे, घन घटाओं में बिजुरी बन, तम के गुट पीऊ मैं कैसे। याद करूँ जब बीती घड़िया, व्याकुल मन मेरा हो जाता, कर्म साधना के उपवन में बनकर तपसी मैं खो जाता। हूँ सौदागर भावनगर का, हो भावशून्य जीव मैं कैसे, घन घटाओं में बिजुरी बन, तम के घुट पीऊ मैं कैसे। चहूँ दिशा मृत्यु का तांडव, पक पक पर मिलती है लाशें, नीलकंठ बनकर मुझको तो लेनी पड़ती है हर सांसे। हूँ पुजारी पंचशील का, हिंसक बन जीव मैं कैसे, घन घटाओं में बिजुरी बन, तम के घुट पीऊ मैं कैसे। धधक रही थी केसर क्यारी, बर्फ भी बन गए हैं अंगारे, चीड़ वनों में भटका पाखी अमनो चमन की बाटो निहारे। हूँ पहरवा मैं सरहद का, सरहद को झुटलाऊ मैं कैसे, घन घटाओ में बिजली बन, तम के घुट पीऊ मैं कैसे। मेरी अगली कविता महत्ता स्तनपान की। देवों के देव तरसते हैं, करणे माँ से दुग्धपान, दिन विश्व स्तनपान, दुग्ध में माँ के अमृत की शान। जन्मा हो जब शिशु नवजात, तुरंत करवा वो दुग्धपान, माँ का दूध है भविष्य की धारा, माँ है सृष्टि का महावरदान। प्रथम दूध की है महिमा न्यारी, पीला दूध है जीवन का सार, उस वक्त माँ का रखे ख्याल, माँ है प्रकृति और भगवान। बसता है हर बूंद में प्राण, जीवामृत उस क्षीर का नाम, नवजात शिशु को संजीवन, प्रसवा को मिले माँ का सम्मान। तेरे आंचल तले शिशु पले, जन्मदायिनी को संतान मिले, दूध की महिमा का यशगान, शिशु के लिए अमृत समान। मेरी अगली कविता हिंदुस्तान नई चीज। अल्लाह कहो ब्रह्मा को, कहो रहीम को राम, करीम स्वयं कृष्ण कभी बोले थे रसखान। भेदभाव बैर नहीं यहाँ, भारत माँ सबको प्यारी, नौरस के इब्राहिम कहते एक चमन की यह फुलवारी, रखनी है हम सबको भारत माँ की शान। कबीर जी ने दिया पैगाम, लिखिए खुसरो जी ने लोरी, धरती पर पैगंबर आए, यहाँ कुरान के पाठ पढ़ाए, जग में उठाओ मिलके भारत माँ का नाम। बोली गुंजी बिस्मिल्लाह की, पाक लब्ज ओम समान, राम नाम भी जीवन की कुंजी, साबित कर गए बैरून खान। राम के संग लेना हमें रहीम का भी नाम, ईसा मसीह भी भिन्न नहीं है, राम रहीम के ही समान। धर्म आडम्बर को त्याग कर, हिंद भूमि है हम सबकी जान, हिंदुस्तान ही चीज है संसारित देश का नाम। मेरी अगली कविता कामगार गीत। ईमान की डगर पे चलना हमें, हम सभी चले, टूट कर गिरेंगे हमारी बीच से वे सभी फासले। कठिनाई या श्रमिक की न आसान, हम बढ़ चले, बंजर जमी पे खिले फुलवारी, सबको सुख मिले। निर्व्यसनी कामगार तो अपने देश को बल मिले, भरमार होगी अमन शांति की, राष्ट्र में गुल खिले। सुख पाएंगे घरों में तो खुशी से वे काम पर चले, जटिल कामों को भी आसान कर यश के दीप जले। लाचार न होगा श्रमिक, साथ मिलकर सभी चले, तरक्की भी करेगा देश हमारा, काम सबको मिले। ईसाई न फारसी कोई, नेकी से ही हम सभी चले, हिंदू सिख मुस्लिम बौद्ध जैन भी सबके दिल मिले। धर्म हो कोई भी हमारा, श्रम को ही धर्म मान चले, ईश्वर खेत यंत्रों के संग संग कर्मी में सुख मिले। न डरना मेहनत से, मिलकर संग सभी चले, होगा दुनिया में गौरव हमारा, देश को मान मिले। मेरी अगली कविता मंदिर लोकशाही का। लोकशाही का मंदिर ऐसा, उसका देवता हो मतदार, विश्वस्त वहाँ ऐसा हो जो नेक विवेकी और ईमानदार। सत्य पर स्थापित होगी नींव, सत्य में वह जयते सम्मान, मूर्ति रूप में होगा मतदाता, मिले वहाँ पे न्यायोपहार। मंदिर के हर दीवारों पर आयते कानून की ही होगी, न्यायमूर्ति की हो प्राण प्रतिष्ठा, सभी वकीलों का हो उद्धार। छत पे ही विराजे नित्य शांति, घुमट में हो विधि स्थापित, सत्य न्याय का स्वर्ण कलश हो भरे नित लोक दरबार। पूजा स्थल यह लोकशाही का, चार मूल स्तंभ है आधार, शासन न्याय सेना पत्रकार, वाह देवता मतदार। संसद भारत का तीर्थ स्थल, राज्यसभा यह श्रद्धा स्थान, वहाँ बैठे जो सभी लोक नेता, जन जन के पहरेदार। संसद की अवहेलना ही तो बहुमत का निरादर है, मतदान यह है महादान, यह दातृत्व का साक्षात्कार। मेरी अगली कविता हम कुर्बान। हिंदुस्तान बदन हमारा, कौमी एकता जान है, तिरंगा सरताज इस पे हम सबको सब कुर्बान है। हिंदुस्तान बदन हमारा, कौमी एकता जान है, तिरंगा सरताज इस पे हम सब कुर्बान है। हिंदुत्व नहीं है मजहब, यह लोक जीवन की धारा, शांति अहिंसा धर्म इस पे हम सब कुर्बान है। मजहबी बैर मिटाकर सभी को मिलके रहना है, स्वर्णिम यह धरा इस पे हम सब कुर्बान है। भिन्न भिन्न फूलों की ही भांति सब गुलशन में रहेंगे, यहाँ स्वर्ग हमारा इस पे हम सब कुर्बान है। बातें है अपनी आपस की, यह देश है हम सबका, नेकी इंसानियत इस पे हम सब कुर्बान है।

0: मेरी अगली कविता राष्ट्रवाद। भाइयों, जीने के लिए हमें न कुछ चाहिए, हमारे खुददारी का हमको सम्मान चाहिए। जीने से लगती कभी कजा ही भली, वफादार एक मुझे लोक नेता चाहिए। सरदर आप में जलता एक चिराग में, बुराई मसले ऐसा हुक्मराना चाहिए। जलकर भया राख मन की आग में, कट्टरता था में ऐसा राष्ट्रवादी चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविताएं, जिन्हें सुना रहे थे भाऊराव मोड़े। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये गीत। गायिका थी लता मंगेशकर, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार आरडी बर्मन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र पाटिल। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिए आपके अपने रेडियो दोस्त आदेश जैन को। नमस्कार।
1: विभावरी हा कार्यक्रम आताच आपण ऐकला। निवेदक होते आदेश जैन। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला। आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। ठीक 12 वाजतापासून आकाशवाणी महाराष्ट्र प्रसारण मुंबई केंद्रावरून सहक्षेपित करण्यात येईल। यात ठीक 12 वाजता खास महिलांसाठीचा कार्यक्रम वनिता मंडळ आपण ऐकू शकाल।
2: कमी वेळात जास्त नफा,
3: बस एका क्लिकवर कमाल आहे।
4: अनोळखी लिंक्स वर क्लिक करू नका। RBI सांगते,
5: जाणकार बना, सतर्क रहा।
6: QR कोड स्कॅन करा, 5,000 कॅशबॅक मिळवा। वाह, दिवस वसूल झाला।
5: फसला। UPI पिन एंटरिंग, फक्त पैसे पाठवण्यासाठी।
4: RBI सांगते,
5: जाणकार बना, सतर्क रहा।
7: श्रोते हो, दुपारचे 12 वाजता सादर करीत आहोत कार्यक्रम वनिता मंडळ।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारे

0: और अगला प्रश्न हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।

0: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
1: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
0: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोरजी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोरजी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी।

0: है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्धशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर।
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको।
4: फेंका जनाब।
1: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
6: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम।
1: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
7: मे आई कम इन सर?
3: यस, कम इन।
7: सर,
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
7: सर,
3: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
7: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
7: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो।

0: शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी साहब।
0: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
7: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
7: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
7: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
7: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी

0: के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: श्रोते हो, आताच आपण NCERT द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ऐकला। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

0: आहे. गेल्या 10 वर्षातील काळ हा इतिहासातील सर्वात उष्ण काळ म्हणून नोंदला गेला आहे. जर तापमान वाढ 2 अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली तर पृथ्वीवरील हवामान संकट अत्यंत घातक आणि नियंत्रणाबाहेर जाईल अशी चेतावणी शास्त्रज्ञांनी दिली आहे. धन्यवाद.
1: जागतिक तापमानवाढ याविषयी अदिती शारंगधर यांनी सांगितलेली माहिती ऐकलीत. निवेदन केलं होतं विद्या तावडे यांनी आणि सादर करते होते विवेक वानखडे. ही आकाशवाणी रत्नागिरी केंद्राची निर्मिती होती.
2: श्रोते हो, ठीक 2:15 आपण ऐकणार आहात दोपहर समाचार. हे दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होणारं बातमीपत्र आम्ही ते सहक्षेपित करीत आहोत.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा. कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा. असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया. मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया. हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना. और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे. 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे.
4: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है. इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं. पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा. पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं. इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी. प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है. कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं. सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी.
3: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं. कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है. सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा. एक रिपोर्ट.
5: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है. न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है. इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल.
3: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है. एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है. संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी. ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं

0: को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की

0: सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गो में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा।

0: जम्मू कश्मीर में घाटे की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी तसंच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी। दुपारचे 2:30 होत आहेत। सादर करीत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आता आपण ऐकणार आहात साहित्य कुमार नाहर यांनी सतारीवर वाजवलेला राग शुद्ध सारंग। मध्यालय गत आहे रूपक तालात निबद्ध आणि द्रुतगत आहे एक तालात निबद्ध। यांना तबला साथ दिली आहे दिलशाद अहमद खान यांनी। तर ऐकूया साहित्य कुमार नाहर यांनी सतारीवर वाजवलेला राग शुद्ध सारंग।

0: ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून तसंच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक. होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी. तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात.
0: श्रोते हो ठीक 3 वाजता आपण ऐकणार आहात मुंबई केंद्रावरून प्रसारित होणारं प्रादेशिक बातमीपत्र.

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। He was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधान

0: डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी.
1: Dr. R. Ganesh is also a prolific author, having more than 70 books to
2: Shri
1: his credit.
2: Bhagat Singh Koshyari, Lok Karya.
0: Bhagat Singh Koshyari, jinhe Bhagat Da ke naam se jana jata hai, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं.
1: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्ड टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन.
2: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग.
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है.
1: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप.
2: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा.
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे. उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते.
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: Ramaswamy, Palliswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी.
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं. आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था.
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: श्री
1: guidelines.
2: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी.
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम. 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया. नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं.
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स.
2: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी.
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की. 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत.
1: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स.
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन.
0: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं. आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है.
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
0: Jaisalmer ke Tagaram Bhil Algoza bajate hain. Kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
1: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He
2: Sushri
1: got many opportunities.
2: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी. 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय

0: महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities.

0: literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri Kumar Bose, Kala Tabla.
2: Kumar Bose, Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है. आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे.
0: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
1: Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं.
0: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई. He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है. राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं. 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अलपुआ से आती हैं.
0: Shrimati Devaki Amma relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले, चिकित्सा.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर सामाजिक
2: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा.
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है, हॉर्नबिल.

0: नमस्कार करते हुए तेजी गोबिंद 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report
2: Dr.
1: on the security
2: H. V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: Shri
1: B.C. Roy
2: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including
2: Shri
1: PhD level
2: Meer
1: studies in
2: Hazi
1: folk.
2: Kasam Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं। आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं, 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant Kala Kurumba Tribal Painting, unki patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था। आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार अपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश

0: Rajesh Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Rabbari is this first year khiladi ki T44 unchi kood mein vishw mein aap number one hai. और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू अक्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: As Commissioner of Chennai, श्री के विजय कुमार reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG law and order, he strengthened public safety strategies.
1: Devba Lard, Dada Lard, Krishi.
2: देवालाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्रीरंग देवालाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज़ वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स सब्जेक्ट्स सच एज लिटरेचर हिस्ट्री आर्ट कल्चर एंड फिलोसफी।
1: प्रोफेसर डॉक्टर सरोज मंडल चिकित्सा कार्डियोलॉजी।
2: 69 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddha Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Buddha Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: While working in the archaeological survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मंडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala कंथा एम्ब्रॉयडरी।
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए

0: स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड।
2: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: श्री मुखोपाध्याय
2: श्री सत्य नारायण नंदलाल नवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: 74 वर्षीय नवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष है। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition which has
2: Shri
1: been supplied to the
2: Pajanivel khel silambam.
0: Silambam 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आप से आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr.
1: students.
2: Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex

0: complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several
1: Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts have
1: borne fruit. Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
0: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री,
2: 86 साल के शास्त्री जी,
1: साहित्य एवं शिक्षा
2: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
2: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
0: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी
1: टैलेंट। श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
2: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan evam Engineering.
2: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
0: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
1: श्री श्रीमती शिव

0: करी साहित्य एवं शिक्षा।
1: अब बारी श्रीमती शिवशंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, ख़ास तौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: Sridhar ji, Akashvani ke up mahanidheshak rahe aur vigyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM
0: एंड डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
2: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
0: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
1: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
2: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
0: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
1: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
2: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
0: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
1: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी

0: त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years, on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley Var, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
1: Shri Ward has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूलें. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको ले चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण

समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक

0: और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानी पूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। नागपूरचे उद्योगपती सत्यनारायण नुवाल आणि गुरुकुंज मोझरी इथल्या जनार्दन बोथे गुरुजी यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्म पुरस्कार प्रदान। आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भूराजकीय आणि आर्थिक संघर्षामुळे अर्थव्यवस्थेला आव्हानं निर्माण होत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचं प्रतिपादन। गेल्या 15 मे पासून पेट्रोल आणि डिझेलची चौथ्यांदा दरवाढ, काँग्रेस पक्षाची सरकारवर टीका। आणि 27 मे पासून विदर्भातील काही भागात हलक्या पूर्व मान्सून पावसाची शक्यता। आता सविस्तर बातम्या। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे अनुयायी अमरावती जिल्ह्यातील अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडळाच्या माध्यमातून

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी आदौ मुख्य वार्ताः राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति अथ वार्ताः विस्तरेण राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति यस्मिन् पद्मविभूषणः पद्मभूषणः पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति अद्य 26,000 तमे वर्षे

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चार पायांवरून दोन पायांवर उभा राहिलेला, हातात दगडी हत्यार घेऊन निसर्गाशी झुंजणारा आणि आज बुद्धीच्या जोरावर अंतराळात झेप घेणारा असा हा मानव, त्याचा प्रवास कसा झाला असेल, कोण होते आपले पूर्वज, कशी घडली आपली मानवी उत्क्रांती? श्रोते हो, आकाशवाणीच्या 90 वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासानिमित्त आम्ही घेऊन आलो आहोत आकाशवाणी मुंबईनं प्रसारित केलेली अत्यंत लोकप्रिय आणि अभ्यासपूर्ण मालिका मानवी उत्क्रांती। मानवी उत्क्रांती मालिकेचे सर्व भाग आता उपलब्ध होत आहेत थेट आकाशवाणीच्या यूट्यूब चॅनलवर। तेव्हा इतिहास जाणून घ्या, विज्ञानाची गंमत अनुभवा आणि भूतकाळातून भविष्याचा वेध घ्या। आजच आकाशवाणी मुंबईच्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अवश्य ऐका मानवाच्या जन्माची अद्भुत गाथा मानवी उत्क्रांती।
2: 7:15 वाजले आहेत, आता ऐकूया कार्यक्रम वृत्तविशेष।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।

0: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथहानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
5: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित

0: समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
3: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
2: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
4: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289904044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए

0: तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70 पॉइंट औसतम 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव आपातकालीन सहायता इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहां पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने एक ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहां पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहां पे अपना ढूंढ सकते हैं।
1: ऐसे जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से।
0: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में जैसे आपने मुझसे कहा जी। तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहां के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहां पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती है उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर।
1: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा
0: इसका पार्ट टू
1: भी ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए क्या पेड है भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जब आप इनकी सर्विसेज लोगे आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे तो इस हिसाब से का जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहां के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी हम ये सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। हेलो
2: नमस्कार मैडम मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी।
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जाता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है किसी के दोनों पैर खराब है वो अपने से तो निकल भी नहीं सकते उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी जी। धर्मवीर जी और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567 ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके

0: जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांजी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है।
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळ सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है, वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देख के परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है।
1: जी, और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी। आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स है उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी।
0: जी इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक

0: से हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें एक इसमें और ऐड कर रहा था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा वो छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
2: जी अमित उपाध्याय जी सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मुनाली जी अगर देखूं, जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है।
2: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
2: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
2: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
2: श्रीपाद जी आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
2: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है, इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यरत कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो

0: रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान है, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4567-14567, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: आप सभी लोगों को आगामी पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
2: जी। और जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4567 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4567 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, भी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
0: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहां पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की, और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है, तो उधर भी उपलब्ध होगी जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहां पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी।
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
3: मैं राजकुमारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी,
3: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है, और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट जनरली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप

0: में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्री वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है.
1: जी, तो इसमें जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है. एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं. हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट. तो वहां पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशन कैटरैक्ट के होने हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने हैं, जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है.
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी.
2: नमस्कार. आपका सवाल.
1: हाँ जी,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं.
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे.
0: रामाशंकर जी आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है. आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं.
1: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है. नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं.
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने. मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने.
1: जी, राजेश नेमा जी.
3: जी
1: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ.
1: जी,
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी.
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर अब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा. हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं.
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी, थैंक यू इस सवाल के लिए. हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं. हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए. तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है. तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की

0: आपकी वो है योजना है?
1: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से एप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
0: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा, सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्री